0: नखराई दो 101.6 MHz FM उज्जैन तो तीनों कचरांग तो वन रोकनी पुखुक मामा नो चरो जंग तीनी कोकलम शराय जाने में फैमिली प्लानिंग नो ती कोकलम शराय जाने में और चरो वो थाना याना कोक दो फाइजा का हेलो हेलो चोई थाना है ना हाय कोकरे और चरो वो तुम क्या करना ने मुझे कोई थाना के दारक सीधा खलाई करेंगे मानो तमी हैं के अच्छा रहो फाइजक नहीं नहीं लेना हेलो हेलो
1: हेलो
0: ताकुनो लम्शो को फ़ोन कहाँ
1: फ़ोन कहाँ
0: हेलो
1: हेलो
0: ताकुनो लम्शो को फ़ोन कहाँ पुलान शीने मोशा कहेंगे पहले कैसा नहीं
1: अच्छा
0: तूने
1: ने कब मांगा फैमिली प्लानिंग ना फैमिली प्लानिंग बोलते नुकुंग सराय खनाय नते वान सुंगंग अब हेरंग न बले ना हम माहि नाय बले चिन कबाय दे थबो अन को खय बहाय जे फैमिली प्लानिंग माने थबो नाय सुगय नाय हाय बिसस लाय इसिने बागय जेमन नुकुंग खाव माने न खरकसा पाय खरकसा बाय माने तला बोरि मिलि होने संसार केचा ओमफ्राय अजागाव थाबुक जे नुगमानि माने दुय कायसा अर्थात 50% जिंगु माइनास वान दङ ओमफ्राय अबहायग्लायो जुदि सलिखा ओंखाय इ खथा प्रथम मरंनि समय अर्थात 40-50 बसर परे 50% खानायसं

0: बोकाम सालंबाई के जत वार्सप न जत वाल जेजरा कॉल खाइ तंगले रोकाम सालंबाई के ते हासन सांबा सुनाम बई सांबन गाना सुनाम बई गाना ना आतु फेरि ने यात्री पक्ष नि मारी नि हमसमा थाबं या करे दो को कहन सालंका दा मिरि तो आपनि बाबी सपन ना हम तक ये तिने तो बाई माने फॅमिली नि ती साले माने हे दा आ फॅमिली तो कैसे माने नुकुंग न के ताबसिनि नुकुंग ब जे सामुं खायगें के आबो तो फॅमिली नुकुंग काहाम काहाम खायगें के काहाम नि फल काहाम न माने हे दिबाना सिं ताबो जे पुरु पुरु फान काहाम सामुं खाय थां के सिं फल माने हे तनो खा लखनानि नांगो खा बारा के सामुं खाय माने जे कोनो सामुं खायनाबो खा लखनानि नांगो के बे सिं ताबो जे पुरु कैसे गिसु तंगो जे ताबो नरो आगस्तानिनि बिस बिस सामुं खाय जा बबो नोंनि कैसे फेमिलि हाय तता आबो हाय के कैसा सामुं आलाय दा कोनो खलाय के जे कोनो निनि थमा बबो मन फेमिलि ता आबो हाय नता के आंग सुन छाजि नै बाय के तोरो रो पान के ते जान नरो बकिरिन गान बेलाय हमबाय
1: बेलाय हमबाय हमबाय आ त को क अंकल पिनि तो ते खरोक सा कोक तो फैजे नै ले हेलो
2: हेलो
1: हां तखन नाम छ को फुंकहा
2: फुंकहा बाय आ कोइ वांग दु नि पिजु सारि दु
1: द
2: पिजु ना कादि जाय दं हाय
1: हां
2: तंगे आं गै दाबो कायसे बरो काम नङे आं कल खाइ मोन दा बाय हां तंगे जिनि अंकल न आं आ न नाम दिनै नि नै कल खाइ मोन दा हां बतुम का खाइ दं हाय आ नबर सुजे आ न कल बे खाइ गै जावता
1: जेरे खरक नै न वान सुकै हाबानो एबा कबा भारत हाकत नि बिसिं दि साजागै दङ खरक नि नि गोबां हिङेके जों जालुङ जागु रखेने ते फेबा गोबां बर' रक दङ खरक तामनि खरक बुरै नि सिलाइ बक गोबां रक दङ फेबा केबनि हिङेके केरे अबहाय रक नङ जा जिनि ताखौ जों साखौ मताय रक जेरि माने हिने आब फेबा हेलो
3: हेलो फुंका हम बाय न ताइचा
1: फुंका हम
3: टिक चंद्र पारानी रविंद्र देव ब्रह्मा बाय
1: ताको रविंद्र
3: हां छ जम सान बाय का न सिनी तो का
1: दो
3: परंग जी मा बाय आ मन न सिनी तो का बाय जता न सिने एफएम उदय थनी आ सुन ने आर जे रंग जता न सिनी हाय दे बाय परंग बाय बुसि हम का थासे थानी सान न
1: दो
3: नि गग गत मा बेला खे नांग मानि तांगै हिंदे सङ अम थारा सिनी संसार चलिया हाय दे बाय চিনি সাগ ফাটা রং নি বেবং নম জয়ন খাই দেবা বেবং বসাগ নাং যাক গফা যাক ইনকাই অবন নগ নুখুঙ্গ ব ফাটারা ব মা সালাই বেলা হাই হেনে হেড বাবাই নম নম অম হাই খাজি বাবা অম হাই খাজি মা হেনে নম হাই খাজাকে সানাই অম হাই রক সুন সালাই বেলা বিজনেস হাই দেবাই জানি জানি লাইন তো সুন পেলেনিং তো নাং নাই বলে পেলেনিং হাই দেবা তো পেলেন তো নাং নাই হিংকে আবনি বাগে সুন মা ছালাই বসাবো তো নি বাগে কাহাম নি বাগে ফিয়া সা লাং মা কাহাম তং না বাগে এ আবন সুন বাক্সা বাক্সা ফেলু নুক যাবো তাঙে হিন্দি বাই নক নুকুঙ্গ বেলায় জং জাল যে কোনো পর বেলাম উঙ্গোতা মালাই সুগলাই এফান অংখা ইংকা তাং থিনি তুই থিনি ফান রিঙ্গিয়া লেরো আমা হাই ইরাই সিরাই রক সালাই দিলা হে দেবা বাই কে ইয়া মনি তুই ব ফেলঙ্গো ইংকা সঙ্গ আমা হাই হিনে ওই সঙ্গ বুনিয়া

ni pheba sini sini kok buma opono sini bosongni bagai family planning nango pheba sini bosongni bagai hinge jeng at least khorokta jeng ebaraise tonina nango hede saka dokokre ajara tini ni bagai tei jora krekha oli jora rogo खनन तेसनर वय मलाई फिरे अ कग्रे विरांग तिनि नरोले बखौ मा मनरन बसासिने थांते थांते नरक जतनन सानानि मुसुङ काम करन त मय जतन ते वाति र वाबै त मनि बगे आ वातिनि ताबु जराव आ हजक त मय जानि युथुन अ कक सवैनांग तिनि नरोन बखौ ख मा मन अरन बसासिने ते हाय न हाय नरक वय मलाई फिने अ कग्रे जतनन फुंका हाम जतनन खुलमुंग ते खाका हाम ई आफारो।

0: अपने मारे किसी बिमोल बाहर सब जागर सम तंसा सं खना लाखिया ना आओ तीसरा गाना बसा हुई रसम रोग ओमो है क्या नमस्य हो तीसरा तीमा बसे कॉक थाई रोक थे पावी है दीवाना आओ हके सं कॉक सालाई फुरुबो है नो कबांग जो रावनो तीसरा हाँ तीसरा है कर तीमा निशालाई आरंग से लोक्सियो निरो कॉक सालाई नरक ने बिशुंगो तुमुनो खरक्षसक ओमोनी मीनिंग सेमन का हुके आंग बाई करें होरे मानो खापुने मारे किसी अन्या फावत ताई बतोंगो नरक बाई कॉक सालाई नहीं है दीवा ओजरो सबतों कॉक दुगो नहीं नेना को हेलो हेलो हेलो खरंग दखना हेलो खरंग खना लिया करंगे मान लिया आओ हके जंग कॉक साले पुरु रोगो कॉक साप सी सापुरु शिमिंग्या सी पुरु रोगो बो है नो कॉक सालायो सी लायो ओमो हके नो कैसा बॉसोंग ने आ सी मानी लिटरेचर कल्चर हंदी आप रो ब्याबाग नो क्रैक कुसुगो कावो है दीवा मैं ना को है नो हाय साबोतोंग पी हेलो
1: हेलो फोंग दीपोर कहाँ आंग्यांग सिन्नानी वाकी तिसारी कांगो दो था
0: बेलाय हम्बाई ताइलाम सुगो
1: ओके ए
0: नोनो आंगजे सामानी अकक बुडो बुसिनो रमदी
1: ओ को वापी छेवा ओरिया दुयांग ओरिया दुवा बिनो वापी थाइमानी बागे आंगको कि काहा का बुजिया बला था
0: वते गबांग वाय दङो ना
1: ए
0: ओ तबगुलान खरां खार खाना हो
1: खरां गाय खनाय दं हायांग फुनो आं फुनले आंनि निनो फेटाय दं
0: खाबो दा दा दा दा ककरे हेके सेंकक सालाय फुर रगो गबांग ककनो सालायो ना मोहाय जरा जरा रगो तामरक सालाय हेके तैमानि स्लाय आरांग से लक्सियो हुनै अमोहाय कक थेर खर खनाका
1: ओं कक खना मा तो खना का सार
0: बुडो गुसि
1: ग्रेका उं करो ना सु बु बुदिया
0: मैने सिंग बाय क्रिं हरनेर नि बिसिंगो साबो बुजिनाय तं तिनियो नाय नाय नाय नंग बुसि आं गां गरा तंगर सिथिं नर खरक साबो बुजिनाय क्रि हिं गां सानाय ता हे दिबा
1: हे सार आं को उं को आबनो बुदिया फां को फां का सा सक
0: इ
1: लक लक फां सासु या साइ खनारि ना
0: सादि सादि सादि सादि
1: ए
0: इ सादि द
1: ए खावन सारा कोन

0: खपनी मार्केसी नोरुक खनाई तंगो सरसा पॉइंट डॉक मेगा हर्जो एफएम उज्जैन तो नोरुक ने हमजक मा सिनिक खातुंग मा पांदा आओ नोरुक खनानन बगाइना एक रंग हरदी आंग बाई 03-81-232-6253 कोक दोक नंबर ने बिशिंग ते ताई शाहर दी नोरुक बोर समुंग खनानन मुसुंग रसमुंग ने कोक थाई असमनाई शाबो नोरुक शाहर दी नोरुक नो ओ जोरावो रसमुंग खनारई नोरुक ने खानो ताइबो तोंग थोगरवाना आओ नयन साबो तोंग कोक दोगो हेलो
1: हेलो
0: आओ दीपोर कहाम
1: ए सर दीपोर कहाम
0: प्रेमानंद त्रिपुरा सब्रुम आमचानी सदी प्रेमानंद
1: मानाय
0: तां मानियांनाय
1: आं फिल्मनि बुंनि सिया सार गाननि लाइन दक यो सार बादल गर्जा बिजली चमकी अबहायनो कायसा बिजली सामुं खामायसा
0: के नि बोर सामुं बो फिल्मनि सामुं
1: फिल्मनि बुंले सिया सार
0: के इरसामुं कक थाय सागरा दि
1: बादल गर्जा बिजली चमकी
0: ओ बादल गर्जा बादल लक्ष्मी ताना अ द नुनो आं खनारु वन नंग खनाय नायदि नंग सामानि आबो दांखा आबो सामालिया ताव नंग ब सासुगै मानिया गांगाबा
1: कुमार कुना कुमार सानुबाय रे साबजा
0: ओ कुमार सानुबाय साबजा
1: हाय सानु अलकायाक
0: ए कुमार सानुबाय साबजा ना कुमार सानु ताय अलकायाक नि बहुत खनामा नङाबो
1: खनामानि किसा बालुखा सार
0: बालुखा ना खानाया बालुखा
1: आबो किसा किसा वाते वाय तुमुबा
0: ए
1: बागै दाव कास

0: बार गरम माथना ना है तो आं ओय खेंति कबो खनानि गने किसा तंगनि बानो फोन खलाके दो सार
1: सिनि आबो या बर गनि अमुतै हेगा रहनानि आबो राइदा करै दो
0: ए
1: राइदा करै आबो आवन बागैनाय अम हेगा रहरि मानिया
0: ने बरो खा आ बरो खा न तम हनि सागा बरो वालै लै जा आं कक खाइया अन नंबर ओ गोगरा दिसनि खाइथाता
1: आ द ग नंग सामना बो ग तो गोरे गोरे मखरे पे काला काला चश्मा ना ओ ई सुहाग फिल्म ए
0: सुहाग फिल्म ने म नंग सार अम
1: सुहाग फिल्म ने रसा मोंग निन मो ए ए हके खना गाडी ता नंग खना मु सुमाने अक्षय कुमार नि खरांगो रसा मो हे दिबा द आको हके बेलाय हम बाय दो

0: हेलो हेलो हेलो खरां खानाया हेलो
1: हेलो
0: आव लाम सुगो
1: हेलो
0: सादी यां खानाय दङ निनि खरां
1: मंगिया
0: मंगिया गामिनि साबंखा
1: गामिनि आं दिलीप देबर्मा
0: सारी दिलीप तामसानाय
1: ताखुक आलखाय क कबरक निशे
0: या सागरी बर सामू
1: अबका
0: ओ साल पास ठीका मानी ओ आर सामू न खाना मु संगी दं खाता ना
1: जतनी बाजू न जे टाइम फिनाउ आयं बाइकनि का सोंग बरत बहुत डकरा नंग नाय हाय तो नंग नि अमर जे कव सिंह फोन अमर नंग नंग बग बसी छ नंग से सका खम जाव न गय
0: हां हेलो
1: चलो देखा हम भाई मार उल मार नि कव कॉल मान मान जा गई
0: ओ दा दा दा आको है के गन दा नै खाना तक जाग मने रसा मंगुसा तै गुतमनि खरांगो और सा मुंग खनाय नगर सिदि ता हेके
1: आ
0: दा दा दा हम
1: ना ना गलाय के हम
0: दा

खाबाने मारे किसी एक नरक नर समुंग तंग सकना रना ही तबोक ताऊ नीर समुंग के नर निभागे गोतमायर सब जागर समुंग तंग सा इंग्रजी दिंग दो

खापने मारे किसी नर खनाई तो हो सरसा पॉइंट डॉग मेगा हर्जो खना तो खरांग हाय के नर नो ताबु ताई तंगसा रसमुंग खनारो वन ताबु ने रसमुंग गांग के सुरुबी ताई मेडिसन ने खरांगो और रसमुंग निग्रासी

आओ खपने मारेके सिं नरक खाना बाइके आसक जरा सुरबी ताई मेडिसिन नि खरंग रसाम माथिया आओ खपने मारेके सिं नरक नि बागै रसाम ताई तांगसा ताबोक नि ओर रसाम गांके आओ सिनि त्रिपुरा हास्ते नि रसाब करं हाइपन संबाय तिनि ओ करैखा विमल विमल बेरसाब जाक ओर रसाम नरनि बागै इंग्रासिथों

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी।

0: Work from home? High salary? Shudhu acting like a Arifas?
1: Onno phade.
2: অচেনা অজানা লিঙ্কে কখনো ক্লিক করবেন না। আরবিআই এ কথা বলে,
3: জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন।
4: আপ 70 বছরে অধিক উম্র কে দেশ কে হর বুজুর্গ কো अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
5: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
6: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗರ್ತಲಾ. ಕೋಕ್ತುಮ ಪುರಿಯು ನಿರ್ಮಲೆಂದು ಆಚಾರ್ಯ ತಿನ್ನಿ ಕೋಕ್ತುಮ ಭೂಭಾಗ ರಘಂಖಾ ಮುಂದ್ರಿ ಬಕ್ರಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಕಾ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಲಕ್ ಕೈಸಾ ಥಿನಾಂ ಕಚುಂಗ್ ನಿ ಫೈಸಿಂಗ್ ಸುಮಾಯ್ ತಾಂಗೈ ಸಿನಾಮ್ ದಾಗ್ ಮುಂದ್ರಿ ಬಕ್ರ ಸಾಕಾ ಮುಂದ್ರಿ ಬಕ್ರಕ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನಾ ವ ಆವಳಿ ಆಮ್ ಚಾಯ ತಾಯ್ಬ ಬ್ರೀ ಸಾಯ್ ಥಾಮ್ರಾ ನಕ್ ತಾಂಗೈ ರಿನಾನ್ ಬಾಗೈ ಕೇಂದ್ರ ನಿ ಹಾಫಾಂ ಹಾಸ್ತನ ರಾಂ ಖಕ್ ಸಾ ಸಾಯ್ ಸ್ನಿ ರುಜಾಕ್ ಬಾಚಿ ರಾಸಾಯ್ ರಾಂ ಬಖಾ ತಿನಿ ಹಾಯುಂ ಲುಕುಬಾಂ ಮಾ ಸಾಲ್ ಹಾ ಕೊತನಿ ಕುಬುನ್ ಆಮ್ ಚೈನ್ ದೈ ಬಾಕ್ಸಾ ಹಾಸ್ತ ಅಬ ಓ ಸಾಲ್ ನ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಕೆ ಬರಮ್ ರುವಿ ಪಾಲಾಯ್ ಜಾಖಾ ಮುಂದ್ರಿಯಕ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಿಕ್ ಸಾಹಾ ವಾತುನಿ ತುಯ್ ಕುಜಾಯ್ ತಂಗ್ಮಾ ತಾಯ್ ತುಯ್ ಲಮ್ಸಾಮಾ ಆಮ್ ಚೈನ್ ನ ಸಾಯ್ಯ ಹಾಮ್ಕ್ರಾಯ್ ಗುನಾಂ ತಾಂಗುತಾಂ ಸನಾಮ್ನಾನಿ ದಾಗಿಖಾ ತಾಬು ಕಕ್ತುಮ ಸಕ್ರುಬುಯ್ ಮುಂದ್ರಿ ಬಕ್ರಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಕಾ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಲಕ್ ಕೈಸಾ ಥಿನಾಂ ಕಚುಂಗ್ ನಿ ಫೈಸಿಂ ಸುಮಾಯ್ ತಾಂಗೈ ಸನಾಮ್ ಜಾಕ್ ತಿನಿ ಆಕ್ಲೆಂಡ ಹದಾನಿ ಮೇಲ್ ಕೈಸಾ ವ ಮ ಕಕ್ ಸಾಕಾ ರಿಜಾಬ್ ಮಂಗ್ ಮುಸಾಮಂಗ್ ನಿ ಬಿಸಿಂ ತುಯ್ ಮುಂದ್ರಿ ಬಕ್ರಕ್ ನ ಲಾಮ್ಸಕ್ ಜಾಕಾ ಮುಚಾಂ ಮೋದಿ ಸಾಕಾ ಹಾಯುಂ ಬೆರೆಮ್ ನಿ ದಾಂಗ್ಸಾ ವ ಬ ಭಾರತ ತಾಯ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾ ಕೊತರ್ ಕೈಸಾ ತೆ ಕೈಸಾ ಹಾ ಕೊತರ್ ನಿ ಚುಬಾನಾಯ್ ತಾಯ್ ಕಿಚಿಂ ಹಾ ಕೊತರ್ ভারত প্রশান্ত তুইজলাং কতর আমচাইও তংকুচাং থিতি তাই নাইমুথাংনি বাগৈ ভারত তাই নিউজিল্যান্ডনি বিসিং চুবালাইমা বেলাই নাংকুকমানি মন্ত্রীবক্রক তাই বসাকা তিনিনি হুকুম উন্নতিউই কক খালাইমুং হা কতর কাইনুইনি সনামকর হুকুমু সিরিসিতি তাই সনামমুংনি দিখল চুবাচুনি ইয়াফারলাইমুং তাইব কাহাম অঙ্গান মন্ত্রীবক্রক নিউজিল্যান্ডনি ইউনিভার্সিটি রগ্ন ভারত বরফনি ক্যাম্পাস খুলগনানি কবখা
1: ভারত নিউজিল্যান্ড সম্বন্ধকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কে স্তর পর লে জানে কা ঐতিহাসিক নির্ণয় লিয়া হ্যায় ইসকে অন্তর্গত হম হর ক্ষেত্র মে স্পষ্ট লক্ষ্যো অর ঠোস পরিণামো কে সাথ আগে বড়েঙ্গে ইস বর্ষ হমনে রেকর্ড সময় মে फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे
0: न्यूजीलैंड नि मंत्री बखरक क्रिस्टोफर लाक्सन भारत नि हायुंग बेरेम मारमार बरम काहम बांग्र रुगमा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि तिफां ताई न्यूजीलैंड नि हांक्राय भारत नि बरक रग नि तांग थाई काहम न बलायखा ব ভারত ন কাইসা নাংসুক মানে চুবালাই নাই হিনই সাকা তাই বাবাই নুইনি হালক ন তাই বুচুগ তিসানানি সুমাই তাং মানে ক খুরচা খা মন্দিরকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাকা ত্রিপুরা হাস্তে বেড়াইখরি তাই রাং ফনাংনাই রগনি থানি পুইলা থাইঙ্গি বাজাখা তিনি আগরতলানি শিববারিনি পুকুরি ন নাইথগ্রুমা মেল কাইসা ও মন্ত্রীকরা ম কক সাকা বসাকা মন্ত্রী বক্রক আবাস যোজনা ও আউলি আমচাইও তাইব ব্রী সাই থামরা নক তাঙ্গের নান বাগৈ কেন্দ্রনি হাফাং হাস্তে ন রাং খক সা সাই স্নি রুজাক বাচি রাসাই বখা আগাবিকা দেরামুংনি হালক ন হামসারিউই বাইকে ওয়ানসুক তাং তাং সেব তাই লুকুরক পালখে চেতন নাহারখে কামি পঞ্চায়েত কাইসান কাহামকুক সনামুই মান আবুনি কাইসা ফুনুকমারি অংখা মোহনপুর আরডি ব্লক নি বিজয়নগর কামি পঞ্চায়েত ই নাইকল সং নি ওয়ানসুক্তাং রগ্ন চাসারুমা বাই বসং বেরম ও পঞ্চায়েত উল নুই আজক থাই মানখা বুটিক মডেল সনামুই তিসাজা কাইসা তাং জুদা চেতন্য তিউই রিপোর্ট কাইসা খনাবাইদি
2: বিশিব তৈলমাব ক্লাইও হাস্তিনি তৈকুনি থাইনি হাই মোহনপুর কামি হামক্রাই ব্লক নি বিজয়নগর কামি পঞ্চায়েত ব

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से

0: साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वही प्रभावित

0: परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436287930849155235214 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारे रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।

समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुआई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता त्रिपाठी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन की हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।